0: जोजोल पाथौ नेपाल सम्बन्ध चिन्छ सौ पी खुद अनलाथो खष्टी थो रेडियो नेपाल ख अन्य नदिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। प्रतिनिधि सभा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 बहुमत पारित आगुदु। प्रतिनिधि सभा या निकया बैठकै अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले यवयादिगु वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक बहुमत पारित आगु ख बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय थासा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतम यवयादिगु सोङ्गु विधेयक त स्वीकृति आगुदु। बैठकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नापाङको संशोधन विधेयक 2083 मतदाता नामावली नापाङको संशोधन विधेयक 2083 राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रस्ताव सञ्चालन विधेयक 2081 बहुमत स्वीकृति आगु ख विधेयक स्वीकृति इले प्रतिपक्षी दलीय सांसद पिसा प्रधानमन्त्री हे विधेयक ह्यवे मागु संसदे रोङ्गु विशेषण लिस बी मागु सदन या त उत्तरदायी देके मागु धासे रोस्टम ह्याने दना विरोध नाराबाजी थुएक अगु ख स्वीकृत जुगु सोङ्गु विधेयक दथि संशोधन तेता यो यकुपी सांसद पी संघीय संसद सचिवालय संशोधन दूत बी फैगु सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सदन याता जानकारी बियादिगु ख थयान्य प्रतिनिधि सभा या नापाङ्गु बैठके मिग संसदीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय लिस फोसे प्रतिपक्षी दल तेस विरोधी आगु ख बैठके नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक एन महर व श्रम संस्कृति पार्टी सांसद आर्यन राई प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम 56 कथा प्रधानमन्त्री नापान यसलिस ज्याज जुई मफैको धया दिल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख सचेतक युवराज दुलाला संविधान धारा 76 एक संव्यवस्था याको मन्त्री परिषद या दुज व प्रधानमन्त्री संसद याता उत्तरदायी जुइगु धैगु व्यवस्था याता छल याता सरकार नियोजना सङ्गु धया दिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद खुसबु ओली प्रधानमन्त्री नापानी सलिस ज्याजो सञ्चालन मजुबले प्रतिपक्ष जक मजुसे सत्ता पक्ष हे नापानी स नियने मखङ्गु धया दिल प्रतिपक्ष पङ्ग न्याका ते धुङ्कानी सभामुख अर्याल प्रतिनिधि सभा या नापाङ्गु बैठक झिङ्यागु मिनेट नीति दिका दिगु खसा थुया न्या चङ्गु बैठके सांसद पिसा सडक झाँका ट्रमा नीति मागु विपद जोखिम भुखा पीडित पिन्त आवास वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नापा विशेष सरकारी अध्ययन कोसला दिगु ख अध्ययन स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन ट्याक्सी या हाकुगु नम्बर प्लेट इनेगु जाके त धङ्गु चलखेल वा भ्रष्टाचार जुया चङ्गु वा ट्याक्सी व्यवसाय वा मजदुर पिँ दथु तस्क शोषण फेमाला चङ्गु कनादिगु ख वेक्ला किसान त्यता दुःख बिया चुङ्गु वा माका आतंक नियन्त्रण या मागु धासे उकिया नियन्त्रण या नीति अनुसन्धान हो लपुमाले मागुली बबिया दिल अध्ययन बैठके सांसद पिस बर्खा इले सदर्शिवे म वा वैगु अनुमान यागुले वा पिगु इले ल मदया किसान वा देया नीति तधङ्गु हाठ्या फे मालिगु धासे म लखे वा पिगु पुसा किसान तक ठेङ्केता इना फेना दिल सांसद पिस हुम्ला बाजुरा सिमाना विषयता कया जुगु झाँका विशेषण सरकारी अध्ययनको सासे थथे सीमा कचवन हङ्केता इना फेना दिल सांसद पिस दुरु उत्पादन किसान तेसा इलेहे भुक्तानी क्या मखङ्गु दासे इलेहे भुक्तानी नीति झिङ्यानु दुने अनिवार्य कथम भुक्तानी व्यवस्था याता इना फेना दिल सांसद पिस वैदेशिक जखा वनिपी मजदुर पी ठगे जुया चुङ्गुनी फ्री भिसा फ्री टिकट या व्यवस्था लिचो लाके त इना फेना दिल बैठके मिगन श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सदने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहायता मासे प्लेट कार्ड केना विरोध याना दिगुदु बैठके सभामुख अर्याल सांसद पिस मिगया बैठके लुना दिगु विशेष सरकारी अध्ययन कोसला दिगु ख प्रतिनिधि सभा या मेगु बैठक जेठ 12 गते मङ्गलबार सुतेसिया झिन्छता इले चोनिगु गोसादु सांसद पिसा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी हाठ्या नङ्केगु नीति सरकार स्थायी समाधान माले मागुली बबिया दिगुदु राष्ट्रिय सभा संघीयता सबलीकरण व राष्ट्रिय सरकार समिति व सार्वजनिक नीति व प्रत्यायोजित विधान समिति अमिगो चङ्गु मङ्का बैठके सांसद पिसा होर्डिङ सेन्टर खनेदया चोङ्गु तोनेगु ल शौचालय नापाया हाठ्या थट्ठेन हङ्केता इनाफेन दिल वैशाख 29 गते निगु समिति मङ्का कथा नागार्जुन नगरपालिका दुगु इचुङ नारायण इचुङगु नारायण या होल्डिङ सेन्टर अनुगमन यागु अनतया तगु मनुतेगु व्यवस्था ज्ञानपुषे चुङगुली स्वच्छ तोनेगु ल नसा नेगु व चुनेगु ब्या अफुका बी मागुली सरकारिया ध्यानको सल्लाह दिगु ख संसद विषम प्राकृतिक विपत्ति सरकार थमा मनुतेता रक्षा या मागुली सरकार हे मनुतेता हाठ्या बिया चुङगु दोप बिया दिल अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले पूर्व अर्थमन्त्री पी नापा वैगु बजेट दुथ्याकेगु विशेष संशोधन फना दिगु दु वैगु आर्थिक दया बजेट देखे त लिपाङ्गु ज्यायाना चङ्गु नेथना दिस अर्थमन्त्री डाक्टर वागले च्यामा पूर्व अर्थमन्त्री नापा सुझाकया दिगु ख नाप्लागु झोले मन्त्री डाक्टर वागले सुशासनीय भूमि पलातया सकल नेपामिया जीवन स्तर तब्याकेगु याना बजेट हेगु ज्याजुयासँग धया दिल वैगु आर्थिक दया बजेट देखे गुली पूर्व अर्थमन्त्री नापा सुझाकयागु झोले नापाया अनुभव प्याची अभ्यास या त अनुसरण यासे नुगु लकसे बजेट देखेको अर्थमन्त्री वागले बचा बिया दिगु दु सहलस पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन या त इनाफेना दिसे तयारी विहीन व टुक्रे आयोजनासँग बजेट महेता सुझाव बिया दिल पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला पुलाङको आर्थिक प्रतिवेदन या त अध्ययन या नीति निर्माण देखे मागु बिचापङ्का दिसे विद्युत व्यापारी निजी लगायता खुल्ला याता औद्योगिक क्षेत्र तव्याकेता ओ हेजिङ नीति न्ह्याकेता सुझाव बिया दिला पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज कतिवडा अत्याधिक महत्वाकांक्षी राजस्व आज मतेता सुझाव बिया दिसे राजस्व वृद्धि दर झिगु निसे झिन्यु प्रतिशत यासीमा दुने ते मागुली ब बिया दिला अध्ययना पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सरकार र निजी लगादथी सहकारी उपके मागुली बबिया दिसे साना मजौला तथा ठुला उद्योग या त समान कथा प्रोत्साहन यायगु नीति मागुली बबिया दिलसा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे तदङ्गु आयोजना ते गुलियाम होयाना सीमित राष्ट्रिय गौरवीय आयोजना ते त केन्द्रित या त सुझाव बिया दिगु दु पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत सामाजिक सुरक्षा भत्ता या त लचित वर्गे सीमित याय मागो सरकारी उद्योगको सम्पत्ति या त लिज मोडले यहाँके फैगु विचापङ दिगुदु पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नापाया पूर्वाधार निर्माण या प्रतिफल कमजोर खने दुगु नेथनादिसे पर्यटन पूर्वाधारी लगानी उपके मागु बिचा पुङ्गा दिल अध्ययना पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल खर्च वास्तविक आकलनी लिधांसा कया बजेट देखे मागु खानी तथा प्राकृतिक स्रोत छेलाबुला विशेषण साहसी कोचिना या त सुझाव बिया दिल पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट या त राजनीति प्रतिबद्धता छेलाबुला यागु दस्तावेज या कथा व्याख्या यास सरकारी खर्च कटौती मागुली बबिया दिल सहल सम्पत्ति कापी यो थे पूर्व अर्थमन्त्री पिसा आर्थिक कथा भिङ्केगु ली न्योज्या त निजी लगाया विश्वास उपके त खर्च नियन्त्रण या त उत्पादनमुखी लगाया लगानी उपके मागुली मङ्का बिचा पङ्का दिगु ख प्रदेश सरकारी नेकपा एमाले बोती जुइगु जुगु दुसा जनमत पार्टी या थास मन्त्री जुपिसा राजीनामा बिया दिगु दु मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव एमाले सांसद मोहम्मद समीर या त मिग मन्त्री नियुक्त याना दिगु ख नायक केपी शर्मा ओलिया छे खोपे थौ सुते छिन्छ त अहिले बैठक चुने तेनागु व उगु बैठकै कार्य विभाजन नापाया प्रस्ताव पारित जुइगु ज्या धल दुगु जानकारी बिगुदु वङ्गु मङ्सिरे पुङ्गु पाटिया चिन्चो कगु महाधिवेशनसँग निर्वाचित पदाधिकारी व केन्द्रीय दु जतिगु ज्या भाला नापाया विशेष बैठक या एजेन्डा जुगु नेता भीष्म अधिकारी जानकारी बिया दिगुदु थिथि च्यागु विश्वविद्यालय तेके खाली जुया चोङगु पद या नीति लागु कुल मुक्क निश झिन्चामा उम्मेदवार आवेदन दत्ती छनट व सिफारिस समिति अध्ययन हकगुदु त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिसँग नेमह पूर्व विश्वविद्यालय व पोखरा विश्वविद्यालय नीति स्विचामा स्विचामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय नीति झिङ्गुमा सिन्न आवेदन ल लागु दुसा अथियाना मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नीति निमह लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय नीति झिन्छामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय नीति झिन्छामा व राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नीति निन हेमा सिन्न आवेदन ल लागु मन्त्रालय जानकारी बिगुदु आवेदक तेगु भो अध्ययन याना स्वीकृत उम्मेदवार तेगु सूची पिथना याक्न ज्या न्याकेगु त तयारी समिति जानकारी बिगुदु उपकुलपति नियुक्ति नीति शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय दुगु छनौट तथा सिफारिस समिति यपि व योग्य उम्मेदवार यता छिनु दुने दरखास्त बित वङ्गु वैशाख 25 गते इनाफ यागु ख। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ज्या इलेहे पुवङ के त उजौँ ब्यादिगुदु जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड या केन्द्रीय कार्यालय अनुगमन थिङका दिमा मन्त्री श्रेष्ठ आयोजना स स्थानीय जीवन स्तरीय प्याची ह्युपा वैकु मुक्क देया ऊर्जा लागा महत्व चाहिएको योगदान थिएको भलसा पङ्का दिल मन्त्री श्रेष्ठ आयोजना निर्माण झोले वैगु छुन कथया प्राविधिक व प्रशासनिक खात्या त मन्त्रालय थते नहकेको बचना पाए ब्यादि जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड मातहते कर्णाली प्रदेश या डोल्पा जिल्ला जगदुल्ला अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना सचिव खुगु मेगावाट र जगदुल्ला ए अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना सचिव निपेङ्गु फुटी सुइङ यागु मेगावाट देखे टेङ्गुदु। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नेपाल प्रहरी हो स्वापुतैगु निकाय ग्वालीसँग शैक्षिक परामर्श व्यवसाय के खने दयासँगको विकृति व विसङ्गति नहङ्केगु नीति देनियङ्क शुद्धिकरण अभियान न्याकासँगुदु। शैक्षिक परामर्श सेवा व भाषा शिक्षण नापाया निर्देशिका 2073 कथा अनुमति मकागु विद्यार्थी याता महामदुगु भुवा व आश्वासन बिया आर्थिक ठगी यागु संस्था याता अभियान या हेजुले कार्यवाही यागु थागुदु। शिक्षा व गृह मन्त्रालय उजासँग समन्वय सन्थे जेठ 1 गते नेपाल प्रहरीया ये सोनिका अपराध अनुसन्धान कार्यालय उपत्यका या ठिठी थासे न्याका चोङगु गुई न्यागु शैक्षिक परामर्श कन्सल्टेन्सी संस्था छक्लन्तु छापा मारे याना कार्यवाही निहज्या कागुली आवनिसे थो अभियान दिए न्याङ्क न्याकेगु अपराध अनुसन्धान कार्यालय वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी सन्तोष कुमार खड्का जानकारी ब्यादिल। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री नीता निशा मेहता व विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओ या महानिर्देशक डाक्टर ट्रेडोस अदानोब क्रेब्रेस दथी नाप्लाई चाचुगुदु। स्विजरल्यान्ड जेनेभा विश्व स्वास्थ्य संगठन गोसागोगु हे गुकगु विश्व स्वास्थ्य सभायाजोले वेकअप इन दथी नाप्लाई चाचुगु मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी ब्यादिल। मन्त्री मेहता विश्व स्वास्थ्य संगठन या महानिर्देशक डाक्टर ट्रेडोस नापाया नाप्लाया ज्या यो कोहे बाँध लागु कना दिगु दुसा नाप्लायागु झोले महानिर्देशक डाक्टर ट्रेडोस विश्व स्वास्थ्य संगठन सदा नेपाल नापा सहकार्य ग्वालिया नीति प्रतिबद्ध चुयागु धया दिगु मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारी जानकारी ब्यादिगु ख। सर्वोच्च अदालतीय पूर्ण बैठक फुल कोर्ट पूर्व न्यायाधीश हरिगोविन्द सिंह प्रधान योगदान या त लुमन्ती देछासे सिम या त विचाहक गुदु प्रधान न्यायाधीश नापा न्यायाधीश तेको आकाचाका मिग चोङगु पूर्ण बैठकमा पूर्व न्यायाधीश प्रधान मधुगु लिता कासे शोक वक्तव्य शोक पोङ्कु से दुख कया चोङगु थो इले आत्माया चिर शान्ति कामना यासे शोक कगु छे जद्दी समवेदना पोङ्कगुदु बुइ न्यादया बैसे मधुमा प्रधान विक्रम सम्बत 2032 भदौ 23 गते मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत अस्थायी न्यायाधीश पद नियुक्त जुया विक्रम सम्बत 2048 भदौ 14 गते सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश पद नियुक्त जुया दिगु ख। यहाँ टोखा नगरपालिका साथै धापासे ग्रिनल्यान्ड जखया अतिक्रमित छेटहरा चिक अगुदु उगु नगरपालिका अतिक्रमित संरचना चिके त अटेरी यैपिन त डोजर छेला छेटहरा चिकगु ख थोयान्या झिङ्यानु यङ्कया सूचना पिथना अतिक्रमी छे टहरा चिके त नगरपालिका स्वफु दुमे सकलदथे इनाप्यागु ख। आदेश पिनिया बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ताइवान राष्ट्रपति छिङते नापा तपेङ्क खलाबला यागु चिं केना दिगुदु थो सहल सन् 1979 लिपा नापाङ्गु खुसी अमेरिका व ताइवानी राष्ट्रपति दथी तपेङ्क खलाबला जुइत्याङ्गु ख। मेरिल्यान्ड दुगु संयुक्त सैन्य अड्डा एड न्युजे पत्रकार पि नापा खलाबला याना दिस राष्ट्रपति ट्रम्प ताइवान यता प्रस्तावित लुआब मिगु विषयसँग कोचना या ट्रम्प राष्ट्रपति ट्रम्प लाई नापा खलाबला यागु चिं केना दिगु ख। पत्रकार त्यसा न्याङ्गु न्यासालिस स जी खलाता तयार दु व सदा खलाना चुनि धागु दुसा ट्रम्प या थो नोचु वेकया आयागु चिन भ्रमण लिपा व गुख भ्रमण याचोले चिनिया राष्ट्रपति सी चिङफिङ ताइवान विशेष महामदुगु कथा व्यवस्थापन जुसा यकुहे ज्ञाना फुगु लकस बोलने फैगु ख्यासो बिया दिगु ख। चिना ताइवान या त थगु लागया हिस्सा दावी आसे वया चोंगु दु तर अमेरिका छगुची नीति स्वीकार यासे स्वीकार यासा ताइवान दथि बेजिङ या सार्वभौमिक दावी या त औपचारिक मान्यता बिगु मधु अमेरिकी कानून कथं वासिङटन ताइवान या त आत्मरक्षा नीति मागु लब ललहना वया चोंगु दु थ्वे दथि ताइवान या राष्ट्रपतिलाई अमेरिका हो ताइवान दथि सहलया नीति सदन लुखा चाला चोने गुकना दिसे वा त वोसा ट्रम्प नापान त पेङ्क खलाबला या त एकागु लिसबिया दिल पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ कनेनिसिन्चिनी औपचारिक भ्रमण यात्रा दिगुदु प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोए ज्ञानपुष्य चङ्गु इबोला प्रकोपी भारत ओ अफ्रिकी स्वाङे वैगु दिने जुइगु नुगु दिल्ली जुइता सङ्गु अफ्रिका शिखर सम्मेलन दिकगु दु इबोला संक्रमण या प्रकोप या त ध्याने त सेनिगु पछ पेकगु भारत अफ्रिका शिखर सम्मेलन दिकेगु सहमति जुगु भारतीय विदेश मन्त्रालय जानकारी बिगुदु आकाशय जानकारी आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग दुई कथा नेपाल घरेलु श्रृङ्खला या लिपाङ्गोका साथ ठाउँ अमेरिका नापामितिगु गोसादु नेपाल अमेरिका वा स्कटल्यान्ड दथि थो श्रृङ्खला मितगु सोङ्गु कासा मध्ये नेपाल निगु कासा च्याके ढुङ्कगु दु नेपाल लिपाङ्गो कासा स अमेरिका या त च्याकुसा नि च्याकु कासा नि पेङ्गु अङ्क मुङ्किगु जुगु दुसा गुकी नेपाल या शीर्ष पेङ्गु सम्भावना सेनलाइगु थागु दु आ मौसमी जानकारी थौ देया कोशी बागमती ओ गण्डकी प्रदेश नापा दे न्यङ्क वो लुम्बिनी वा कर्णाली प्रदेश या हिमाली वा पहाडी लागाएको थासे वा वैगु सम्भावना कुबिगु दु सुदूरपश्चिम वा लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी वा तराई लागेको वाइगु सम्भावना कुबिगु न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु मधेस लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिम प्रदेश नापा यको थासे फे वैगु सम्भावना कुबिगु न धागु दु वङ्गु निपे घौले ये सोनि गले क्वाज नि च्यागु फुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस जति चोङ्गु दु सा थाउ निने ये सोनि गया क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु दुकुमा दु थाउ सुथे ये सुनि गले सुथे स्याङ्या त इजुया खुगु मिनेटे खने दुगु निभा शनि लखुता इजुया निए खुगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिस शुभ
1: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
2: नागरिक लगानी कोष।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल, नेपालको समावेशी आवाज।

0: लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्री सम्मत 2862 तालु डफ्रेलाला छेपाडु विक्रम सम्म 2083 साल जेठलाला भ्रे सुङ्ग्रे शुक्रबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी रङ्ग डेन्मुला ङा सूर्य मोक्तान पूर्वधार विकास लोन सुनिल लम्साल चाहिँ निर्माण थुम्री म्याङमा समस्या त छाङ्नाला भरि सरकार तयार मुबासे ढुक्क तसी घेल भरि निर्माण छुङखेन गते त मोइजनला शिवमला प्रतिनिधि सभाला पूर्वाधार विकास समितिला तिनीटी बची साङ्ग्रे लेङ्मु थान्सुबान लोन लम्साल नुप एसियारी युद्धता सिटीबास नेपाली सार्वजनिक पूर्वाधार सुमारी समस्या ठुङमारी वाङमा दुरी सामानला साई च्याङ्नला सि निर्माण छुङखेन गदेला समस्या त छाङ्नला भरि सरकार से बाङ्ला बन मुला विषय सुङसिब हिन्ना काठुरी रङ्गला लेङ्मु थान्सुबान ऊर्जा कि नोर्थेन सिन्चाई लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से विकास निर्माणलाई घे लामा घाइन लाबन बबासे परियोजनालाई खर्च लामन लेबन खबा थेन तोकलाबा दुईरेनी गेला से आपिनमा से विकासलाई घेखोर घाइबा चेकेन आइन महँगो ताबन खाब मुला विषय सुङसिब मुला लोन श्रेष्ठ से सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया से ठेक्का व्यवस्थापन लबरे गाह्रो ताबन खाबसे गुग्रेन ठेक्का थाबा थेन गेलाबारे आखाम्बा अवस्था त थुम्न लबरी खाम्दोल विषय सुङसिब मुला चुरानुलसि काठुरी लेख्मा थान्सुबान नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ चोहो निकोलस पाण्डेसे नुप एसियाला युद्धसे सामान लसाई लेबासे गेलाबारेन आखाम्बा अवस्था खासी दिनमा मुला विषय सुङसिब मुला पूर्वाधार विकास लोनखाङला लोन्छेन गोपाल प्रसाद सिगदेलसे नेपाल सडक सुरक्षाला अवस्थारी विकास ताबन खाबा मुबासे विकास ताबन मुबा युलकादे बिमाइनुन लामन लिच्छा मुबा ताम देनमा हिन्ना विषय सुङसिबान सडक सुरक्षा त व्यवस्थित सुभारी सडक सुरक्षा विधेयक संसद दान्देला ह्वालडेन बाबरी तयारी लाबन मुला विषय सुङसिब मुला काठुरी सांसद गदे से निर्माण छुङखेन गदे लापरवाही से चामथेन सडक ग्याम गदे अल्पत्र खाबासै थेला असर हिउलबासै नाबन खादोब मुला विषय सुङसिबान छुङखेन गदे त राङला पेसाला फेरि इमान्दार तबारी मोइजे नासुब मुला घेखोरी पूर्वाधार विकास समिति लचो आशिष गजुरेल से हिउलसे राङला जिम्मेवारी पुरा लादोबा थेन निर्माण छुङखेन गदे से नुन तोकलाबा दुईरिन गुणस्तरीय गेलाबारी बाङ्लादोबा म्याङबा मुला विषय सुङसिब मुला नुर्बन डाक्टर सोनिम वाग्लेसे उत्पादन लादोबा थुम्रे हिउल नाङला थेन हिउल फिर्का ग्याम बाबारी छेबा बाबा छेद उपयोग लाबारी खाम्साम नोर्थुम ज्याबसोबारी खाम्सेला मुला विषय सुङसिब मुला राष्ट्रिय सभाला विकास नुर्मामिला थेन सुशासन समितिला तिनीसिङ्गे दरबारी टिपची साङ्ग्री नोर्दिङ 2083-84 बजेट सम्बन्धी काठुई घेखोरी लेङ्मा थान्सिबान ब्रोन वाग्लेसे उद्यम निजी थुम थेन लगानी लाबारी खाम्बा वातावरण सोसी नोर्थुम द कोङमा सुबारी बाङ्ला बन मुला विषय सुङसिब हिन्ना ती साङ्ग्री सांसद गदेसे स्यार अनुसन्धान थिएन छार प्रवर्धन थुम्री लगानी लाबन सरकारी सेवाला गुणस्तर ज्याबसुबारी थिएन लुई सेवा थिएन बिमा ठिम द कुङमा सुबारी खाम्दोर विषय सुङ्ब मुला राष्ट्रिय सभाला तिनीलाई ची साङ्से अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081 पारित लाभ मुला विधेयकलाई फेरि काठुलामा रेब प्रश्न गर्दाला जवाब दोन्सिमान रिमठिम पर्यटन थिएन नागरिक उड्डयन खड्गराज पौडेल से विधेयक से हिलवाला थिम थिएन रिमठिम ज्ञान थिएन सांस्कृतिक सम्पदा त सुनला से छार ब्योन गदेदा लोपरी म्याङमा याङताम सुनिश्चित लाभ मुला विषय सुङसिब मुला सांसद गदेसे नेपाल सरकार सन् 2010 अभौतिक सांस्कृतिक महासन्धिलाई पक्ष हुल धोसी जिनमा चाहिँ महासन्धिलाई ठिम गते कार्यान्वयनलाई बारी विधेयक बाधोबा मुला विषय सुङसिब मुला चौरानुलासी सांसद गदेसे राष्ट्रिय गौरवलाई आयोजना गर्दै बजेट छोदे पिनमारी थिम सोभारी कार्की आयोग थिएन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सी बाबा अध्ययनला प्रतिवेदन सार्वजनिक लासी दोषिता कारवाही लाभरी सरकारलाई ध्यान छेङ्ने लाभ मुला सभालाई अर्को चिसाङ चुनुन जेठलालाई चुइसे सोमकुनु टिसेला ताप मुला सुङबुन डोलप्रसाद अरियाल से हुल्दा तोबा थिएन खाबरेरी ताबरी खाम्बा चुनौती गरेदा छाङ्ना लाबरी खाम्बा ठिम सोभारी बाङ्ला सेला मुला विषय सुङसिब मुला नाचाला सांसद मनसे तिनी सिंह दरबारी सेङमा गेखोरी लेङमा थान्सिमान सुङबुन अरियाल से पुरान थिएन आतोबा ठिम्दा संशोधन लाभा अथवा खारेज लासी दुई अनुसार प्रविधि मैत्री छार ठिम सोभारी दान्देला विधेयक गरेदा छार जिम्मेवारी खाब मुला विषय सुङसिब मुला सुङबुन अरियाल से ठिम सोमा विरोध खाबा थिएन व्यवहारिक कमजोर भ्याङबारी नाचाला अनुभव गर्दै से गेलाबारी सेम लाभा थिएन छार प्रविधि त सिंहबारी खाम्बा छार ब्योन गर्दै डेक्सी गेलाबारी खाम्दोब मुला बिसिन सुङसिब मुला धन्देराङ रेडियो नेपाल गाम तामाङ साङ्गुरी ज्ञान छेपा गेन मुला तामाङ साङ्गुरी गोर्खेको विज्ञापन
1: तार भ्लाभ भ्लाभ ज्ञान सावधान तागे सापु खारङबा ह्याम हिन्ना
2: सापु गुर्किक मिमराङमा रिया खम्मा ह्याम हिन्ना विशेषलाई नेपालला मध्य पहाडी क्यार सापु ह्याम महामारीला रूपी म्याङ मनमुला चु ह्यामला लक्षण गदे म्याङमला ब्लीची से ब्रेन से निश्चु से नि घण्टा दोनामा मानला बरिया खम सम ह्याङला मिसे तिलाइनु नामराङ बरि खम्बो मुला चु बिरन दिङला मिदा लगा त बरि खम्बो मुला विशेषलाई जाजको लगा देदा लामा ताबा मुला
1: सापु ह्याम तिला कारण से लगा ताबा मुला
2: दान्दे दोना तार ब्लब्लब्दा सापु ह्याम लगा ताबाला कारण भान बमुला तसैनुन कतिपय अवस्थारी बिसाम तार ब्लब्लब्ला ङामले सुताइनु नानी बमिदा चु ह्याम लगा ताबा मुला स्यान जीवाणु थिन विषाणु का देसे नुन चु ह्याम लगा ताबा रे खम्बो मुला
1: सापु ह्यामला लक्षण का दे तिला तिला हिन्ना
2: एकासी गुर्गिक चकेन मी वाला ताबा थिन मी नया छाबा
1: यालडी चाबरी आखाम्बा
2: मी सुखाबा
1: मान लावारी घाइसाम मीला लानिरी तार मांगबा
2: ज्यानलासी मी मांगबारी आखाम्बा
1: साफु ह्यामदा खारंगलासी काबा
2: तार ब्लब्लब ग्यामसे थारेंग नुन्टीबा
1: लानन यालयालबा तार नांगसाल आम्राबा न्यासे थेन मुना म्राप झ्याल डुङबा
2: खाम्दे दोना म्राप्थेन झ्यालडी जाली झाङबा
1: मेरवा दुरी नाङसाल साइसी अथवा जाजावा नाङसाल म्रासी झुल नाङरी मेरवा
2: युनन मानलाबारी खाम्सम चु याम याम छे फानबारी खाम्बा मुला तर घाइन लाजे बिसाम बिरामी से मि आमराङबारी खाम्बा मुला थेदा बसे चु याम लागा ताबाला संकतासम युन बिमा युन अस्पताल अथवा मिल मानलाबा ग्लारी निगे राङला तोसासे मान अथवा जडीबुडीला प्रयोग आलागे
1: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना थिन संचार केन्द्र
0: दारेम बाकी संगुर लुइथेन चाबासे स्वच्छता ब्लुन निसाम मेहता थेन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ला महानिर्देशक डाक्टर ट्रेडोस आधोनोम घेब्रेसस रूपता शैले मला शुभ मला स्विजरल्यान्ड जेनेभारी विश्व स्वास्थ्य संगठन से सेङमा निश्चय से कुछा मुखिल लुई वाल्डी बोकिनबा ताङरी ब्लुन मेहता सेलिङ लाबाताम ब्लुन खाङला रोलोन छेन डाक्टर समीर कुमार अधिकारी से सुङसुभा हिन्ना नेपाल मेडिकल काउन्सिल से राङला मिनलाङाछा युल्ला ठिम्द नाङसी प्रयोग खबर डाक्टर डा छिक ब्याङमारी निर्देशन पिनमा बोला काउन्सिल ल गेतेनमा रजिस्ट्रार डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे से खाजी बैन विद्याला स्वास्थ्य कर्मी अथवा राङला मिन लगाछा युल्ला ठिम्द नाङसी डाक्टर छिक प्रयोग लाबन खबर स्याप्पा से थे डाक्टर विवाद छिक चुइसेङ हारे नाङरी भ्याङमारी मोइजेन लिन्ना कैलाली जुङला टिकापुरी व्यवस्थामा सशस्त्र प्रहरीदा नेपाली सेनाला हेलिकप्टर से उद्धार लाभमुला रेदाङसे राङनुलासे छ्योङसी ब्राबा दुईरी व्यवस्थामा सशस्त्र प्रहरीदा सेनाला हेलिकप्टर से उद्धार लाभिन्ना सरकार से मुस्लिम धर्म तेनमा गदेला ग्रेन्ड पिबा बकर ईद ईद उल अजहाला अवसरी चुनुन जेठलाला चुइसे ब्लिकुनु सार्वजनिक बिदा पिनमा निर्णय लाभमुला दिम्लोन खाङसी तिनी गुर्केका कागुर छिसी मुस्लिम आयोग से पिनमा जानकारी अनुसार 2083 साल जेठलाला चुइसे ब्ले नारे बिहिबार कुनु बकर ईद ला प्रिब परप्तापसे सार्वजनिक बिदा पिनमा हिन्ना ओसेम याम्बुला चन्द्रगिरी नगरपालिकारी सिसी क्यामेरा झाङबारी नगरपालिका थिए नेपाल प्रहरी से समझदारी लाबमुला याम्बु उपत्यकारी वाङखाबा ग्रेनग्ला चन्द्रगिरी नागढुङ्गा हिंसे कलङ्की दोराला ग्रेन सडक ग्याम्थेन ओडा गेदिम्री निबा ग्याम्री सिसी क्यामेरा थानबारी नगरपालिका थिए नेपाल प्रहरी से समझदारी लाब हिन्ना चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी द तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान मल्लासिगु लसो फ्याफुल्ला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रसभाकै आजुक बैठक छ अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक 2081 सर्वसम्मतिसँग पारित भएल छ। विधान व्यवस्थापन समितिकै प्रतिवेदन सहित प्राप्ति विधेयक सभाकै बहुमतसँग पारित भएल छ। आजुक बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल प्रस्तुत केने विधेयक सभा सर्वसम्मतिसँग पारित कलक छ। विधेयक उपरकै विचार विमर्शमा सांसद गीता देवकोटा, सूर्य कुमार आले मगर, रुकबेडी कोइराला आ विष्णु कुमारी सापकोटा भाग लेने छलेथे। राष्ट्रसभाकै दोस्रो बैठक जेठ 13 गते दिनकै 1:15 बैसत। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल देश के आवश्यकता भविष्य के चुनौती के संबोधन करवासन कानून निर्माण हेबाक चाही पर जोर दिलने। पूर्व सांसद मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करे तो पुरान आ संदर्भी कानून के संशोधन व खारिजी तथा प्रविधि मैत्री नया कानून निर्माण अखन के मुख्य विधायकी जिम्मेवारी भेल बतौलन। सभामुख आर्याल देश निर्माण के लिए तीन पुस्ता के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक चर्च कलन। कानून निर्माण प्रक्रिया में व्यवहारिकता के अभाव रहल कहे तो वर्तमान सवारी चालक अनुमति पत्र संबंधी व्यवस्था के आलोचना कलन। वो लाइसेंस परीक्षा के प्रक्रिया रहल 90 दिन के समय सीमा आ कतेको अवस्था में राखल गेल शैक्षिक योग्यता के प्रावधान प्रति आपत्ति जनौलन। लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण भेनिहार सब 3 महीना धरि इंतजार कर के नियम अव्यवहारिक रहल आ इस नागरिक के जीविकोपार्जन में सेहो बहुबाधा पहुँचने तर्क दिलन। कानून निर्माण करते काल प्रयोगकर्ता आ सरोकार वाला संग पर्याप्त विचार विमर्श नहीं होत आयल कहित सभामुख कार्याल असंतुष्टि व्यक्त कलन। देश के समृद्धि के लिए राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के कार्यालय गति आ भावना मिलवाक चाही ओ धारणा रखलन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव मध्य प्रदेश सभा से अविश्वास के मत लेलने। मध्य प्रदेश सभा के बैठक में मुख्यमंत्री यादव नेपाल के संविधान के धारा 188 के उपधारा 2 प्रदेश सभा में विश्वास के मत मंगलाक बाद पक्ष में 62 प्रदेश सभा सदस्य विश्वास के मत देने छे। मुख्यमंत्री रखने विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव के विपक्ष में 36 प्रदेश सभा के सदस्य सब मत पड़ल। मध्य प्रदेश सभा के सभामुख राम आशीष यादव प्रदेश सभा के बैठक में घोषणा कलने। प्रदेश सभा के आजुक बैठक में 100 प्रदेश सभा सदस्य सब उपस्थित रहल छलित। मध्य प्रदेश सरकार में रहल जनमत पार्टी गत 23 मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव के देने विश्वास के मत फिरता लेलाक बाद 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेबाक संवैधानिक व्यवस्था हिसाबे विश्वास के मत लेलने। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति रहल मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव नेपाली कांग्रेस के 22, नेकपा एमाले के 24, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 15 आ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल के 1 प्रदेश सभा सदस्य सब विश्वास के मत देने छथि। सरकार जेठ 14 गते इस्लाम धर्मावलंबी सबके पर्व बकरीद पड़ला से एक दिन सार्वजनिक छुट्टी देवाक निर्णय कलक। मुस्लिम आयोग से जेठ 14 गते बृहस्पति दिन बकरीद पड़ल जानकारी प्राप्त अयला से एक दिन सार्वजनिक छुट्टी देवाक निर्णय कैल गेल। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफले अके जानकारी दिलन। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले आबवला आर्थिक वर्ष के बजट से स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के पुनः संरचना हेबाक बतौलन। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति के बैठक में ओ वर्तमान मोडालिटी में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम टिकाऊ बनल नहीं सकल बतबैत अ के पूर्ण संरचना के आगू बढ़ेबाक तैयारी भ रहा बतौलन। हुनक हिसाबे गत वर्ष स्वास्थ्य बीमा के लिए 10 अरब टका विनियोजन कैल गेल बावजूदो 25-30 अरब टका धरि के खर्च दाबी आला भुगतानी देव कठिन भेल बतौलन। निजी अस्पताल में अनावश्यक परीक्षण आ दुरुपयोग बढ़ल कहित कार्यक्रम के राइट साइज करबाक आवश्यकता देखल गेल ओ बतौलन। अर्थमंत्री वागले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विपन्न नागरिक अधिकार भेला से सरकार हुनका सबके संरक्षण करबाक मुदा सक्षम नागरिक के योगदान में आधारित बीमा प्रणाली आनल जात से जानकारी देलन। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी संग नेपालक लेल स्पेन के गैरावासी राजदूत जुआन एंटोनियो मार्स पुजोल शिष्टाचार भेंटवार्ता कलने। मंत्रालय में आई भेल भेंटवार्ता में हुनका सबके बीच में
कृषि आधुनिकीकरण, कृषि डिजिटलाइजेसन, गुणस्तरीय कृषि उत्पादन, जल व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल कृषि तथा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारमे विविध विषयमे विचार विमर्श भेल छल। भेटक क्रममे राजदूत पुजोल सन् 2007 होवला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठनके महानिर्देशक पदके निर्वाचनमे नेपाल सरकारके सकारात्मक समर्थन अपेक्षा कयल गेल बतौलनि। एहि सम्बन्धमे मन्त्री चौधरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयक आगू बढाएल जेबाक जानकारी देने मन्त्रालय जनौलकै छ। संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करयवला कार्यदल 2083 के सचिवालय आम नागरिक संग राय सुझाव माग कयलक अछि। संविधान संशोधन प्रक्रिया में सब नेपाली नागरिक के सहभागिता सुनिश्चित करबाक उद्देश्य के संग 7 दिन भीतर लिखित सुझाव माग कयलक अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के राजनीति सलाहकार असीम शाह संयोजक रहल अ कार्यदल विभिन्न राजनीतिक दल से लिखित सुझाव लक विचार विमर्श कर चुकल अछि। कार्यदल विभिन्न समय में संविधानविद, कानूनविद, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रशासक, पूर्व नीतिज्ञ, संचारकर्मी आ राजनीतिक व्यक्तित्व सङ्ग सेहो विचार विमर्शक सुझाव संकलन कऽ चुकल जनौलक अछि। कार्यदल के सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदी संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करबाक लेल विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ तथा सरकार वाला संग विचार विमर्श आ सुझाव संकलन कऽ रहल जानकारी देलनि। परराष्ट्र मंत्रालय नेपाली चाय के भारत निर्यात में देखल गेल अवरोध हटल जनौलक अछि। मंत्रालय द्वारा आई आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत एहि संदर्भ में जानकारी कराएल गेल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौड़ेल छेत्री भारतीय टी बोर्ड जारी केने निर्देशिका के कारण नेपाल चाय आयात में पड़ल प्रभाव कूटनीतिक पहल पश्चात समाधान भेल बतौलनि। नया दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास आ मंत्रालय के समन्वय पश्चात भारतीय पक्ष ई निर्देशिका संशोधन कर संगे नेपाल के चाहपत्ती के निकासी सहज भेल ओ बतौलनि। अहिना नेपाल आ चीन बीच के परियोजना कैनबेन संयंत्र के तेसर बैठक आवय वाला जून महीना में काठमांडू में आयोजना होयबाक तय भेल अछि। मनसून जन्य विपद के कारण भ सकबाक सड़क आ सवारी क्षति के न्यूनीकरण करबाक लेल सड़क आ सवारी लक्षित मनसून जन्य विपद न्यूनीकरण अभियान 2083 शुरू भेल अछि। काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के आयोजना में तथा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रीय महासंघ विभिन्न मजदूर संघ संगठन के सहकार्य में अभियान के आई गोंगबो स्थित नया बस पार्क से शुभारंभ कयल गेल अछि। अभियान के काठमांडू उपत्यका प्रहरी कार्यालय के प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की शुभारंभ कयलनि। कार्यक्रम में वो मनसून जन्य विपद के कारण भ सकबाक सड़क आ सवारी क्षति के न्यूनीकरण करबाक लेल अभियान से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कयल जात से विश्वास व्यक्त कयलनि। आब खेल समाचार। आईसीसी विश्व कप लीग 2 अंतर्गत आज खेल में नेपाल अमेरिका के 122 रन से हरौलक अछि। 318 रन के लक्ष्य के पाछू कर आयल अमेरिका नेपाल 41.2 बॉल में ऑल आउट करैत 122 रन के शानदार जीत हासिल कयलक अछि। कीर्तिपुर स्थित मैदान में टॉस जीत के पहले बैटिंग केने अमेरिका विरुद्ध नेपाल पूरे 50 ओवर खेलत 8 विकेट के क्षति में 317 रन बनौने छल। नेपालक लेल उपकप्तान दीपेंद्र सिंह एरी ईशान पांडे अर्धशतक बनौलनि। जवाबी बैटिंग केने अमेरिका के लेल संजय कृष्ण मूर्ति अर्धशतक के इनिंग खेलनि। ओ संकट में देखल गेल अमेरिका के बैटिंग लाइन के आगा उठब 44 बॉल के सामना कर 56 रन बनौलथि। अमेरिका के सस्ते में समेटक लेल संदीप लामिछा ने 3 विकेट लेले त ललित नारायण राजवंशी 2 विकेट, सोमपाल कामी, दीपेंद्र सिंह एरिया, गुलशन झा 1-1 विकेट लेलनि। लीग 2 के तालिका में अमेरिका 38 अंक सहित शीर्ष स्थान में, समान 28 खेल खेलने नेपाल 24 अंक सहित 5वें स्थान में कायम अछि। एहि संगे नेपाल अमेरिका के त्रिवी मैदान में निरंतर दोसर खेल में हरौलक अछि। एहिसँ पहिने के खेल में नेपाल अमेरिका के 9 विकेट से हरौने छल। घरेलू मैदान में भेल श्रृंखला में 4 मध्य 3 खेल में विजयी होइत नेपाल महत्वपूर्ण 6 अंक जोड़लक अछि। आब मौसम समाचार। अखन नेपाल में पश्चिमी वायु आ स्थानीय वायु के प्रभाव रहल अछि। एहि के प्रभाव रहला से अखन देश के पहाड़ी आ हिमालय भूभाग में साधारणतः बादल लागल अछि, त बाकी तराई भूभाग में मौसम मुख्यतः सफा रहल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। महाशाखा के हिसाबे आई राति कोशी, मधेश, बागमती आ गंडकी प्रदेश में साधारणतः बादल लागत, बाकी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में आंशिक बादल लागत। बाकी तराई भूभाग में मुख्यतः मौसम सफा रहत। कोशी, मधेश, बागमती आ गंडकी प्रदेश के किछ स्थान में मेघ गर्जन, ठनका सहित मध्यम धेर वर्षा, हिमपात के संभावना रहल। महाशाखा जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारत में बढ़ रहल गर्मी के कारण शीतलन उपकरण की प्रयोग तीव्र रूप में बढ़लाक बाद देश के बिजली मांग से निरंतर नया कीर्तिमान बनौलक अछि। गर्मी बीच ऊर्जा उत्पादक रिकॉर्ड स्तर में विद्युत उत्पादन करैत देश के अखन धरि के उच्च मांग पूरा कयने अछि। भारत के ऊर्जा मंत्रालय के हिसाबे बृहस्पति दिन लगातार चारिम दिन देश के चरम बिजली मांग से नया सार्वकालिक उच्च रिकॉर्ड कायम कयलक अछि। मंत्रालय जारी कयने विज्ञप्ति हिसाबे बृहस्पति दिन में 3:45 पर भारत के चरम बिजली मांग 270.82 GW पहुंचल छल, जे सफलतापूर्वक आपूर्ति कायल गेल बतायल गेल अछि। एहि में समय में राजधानी नया दिल्ली के तापक्रम 45.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचल छल। मंत्रालय स्तर के भारत के इतिहास के सबसे उच्च चरम बिजली मांग के रूप में वर्णन कयलक अछि। इससे पहले बुध दिन 265.44 GW के रिकॉर्ड कायम भेल छल, जाय के एक दिन में आगू बढ़त नया कीर्तिमान बनौलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा द्वारा अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 हुआ पारित। रासपा के सभापति रवि लामी छाने सहित 3 व्यक्तियों के ऊपर से संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी केस वापस लेने का कास्की जिला अदालत ने किया आदेश। मोहतरी की मनरा सिस्फा नगरपालिका में 3 बच्चियों की डूबने से हुई मौत। और हरमूज के संबंध में अमेरिका ईरान के बीच समझौता अभी भी अनिश्चित है, यूएई का दावा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 पारित किया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पोडेल ने कहा कि ये विधेयक समुदाय स्तर पर प्रचलित पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण तथा उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों ने कहा कि नेपाल सरकार 2010 में ही अभौतिक सांस्कृतिक महासंधि की पक्ष राष्ट्र बन चुकी है, इसलिए उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए ये विधेयक आवश्यक है। बैठक में वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश भी प्रस्तुत किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने बाजार में कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाली दवाओं की कमी पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और आवश्यक दवाओं की कमी न होने देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय सभा में रिक्त 2 सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति, होल्डिंग सेंटर में मौजूद विस्थापित सुकुम्बासियों की समस्याओं के समाधान, दात्री निकायों से प्राप्त ऋण और सहायता के उत्पादक उपयोग, दैलक में पेट्रोलियम अन्वेषण के दूसरे चरण की शुरुआत और दलित व विपन्न समुदाय के लिए पर्याप्त बजट की मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आगामी जेठ 13 बुधवार दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने आज मध्य प्रदेश सभा के सभा से विश्वासमत प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश सभा की बैठक में मुख्यमंत्री यादव के पक्ष में 62 प्रदेश सभा सदस्यों ने विश्वासमत दिया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वासमत प्रस्ताव के विरोध में 36 सदस्यों ने मतदान किया, जिसकी घोषणा प्रदेश सभा के सभामुख राम आशीष यादव ने की। आज की बैठक में कुल 100 की संख्या में प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थे। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभापति भी रहे मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव को नेपाली कांग्रेस के 22, नेकपा एमाले के 24, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 15 और नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल के 1 सदस्य ने समर्थन देकर विश्वास मत दिया। कास्की जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी छाने सहित गीतेंद्र बाबू राय जीबी और छविलाल जोशी के खिलाफ संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला वापस लेने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश हिमलाल बेलवासे की इजलास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सहकारी ठगी से संबंधित आरोप जारी रहेंगे, लेकिन अन्य आरोप अब कायम नहीं रहेंगे। इस बारे में कास्की जिला अदालत के रजिस्ट्रार राजन खनाल ने जानकारी दी। उनके अनुसार कास्की जिला सरकारी वकील कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर अदालत ने ये आदेश दिया कि रवि लामी छाने सहित अन्य प्रतिवादियों पर लगाए गए संगठित अपराध, संपत्ति शुद्धिकरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंक से संबंधित अपराधों के आरोप अब नहीं चलेंगे और इन्हें संशोधित किया गया है। संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करने वाले कार्यदल 2083 के सचिवालय ने आम नागरिकों से राय और सुझाव मांगे हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया में सभी नेपाली नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 दिनों के भीतर लिखित सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह संयोजक रहे इस कार्यदल ने विभिन्न राजनीतिक दलों से लिखित सुझाव लेकर पहले ही चर्चा कर ली है। कार्यदल ने बताया कि विभिन्न समय पर संविधानविद, कानूनविद, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रशासक, पूर्व कूटनीतिज्ञ, पत्रकार और राजनीतिक व्यक्तित्वों के साथ भी चर्चा कर सुझाव एकत्र किए जा चुके हैं। सांसदों ने जेल तथा पुलिस हिरासत की स्थिति में सुधार, कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव, हिरासत में होने वाली मौतों और मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों पर गंभीरता दिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति की आज की बैठक में सांसदों ने कहा कि देश के अधिकांश जेलों में क्षमता से कई गुना अधिक, लगभग 5 गुना तक कैदी रखे जा रहे हैं। सांसदों ने कहा कि क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आर्थिक स्थिति और हैसियत के आधार पर हिरासत में भेदभाव किया जाता है। सामान्य कैदियों को सीमित जगह में सोना पड़ता है और कई मामलों में हिरासत और जेल मृत्युस्थल बनते जा रहे हैं। बैठक में उठाए गए सवालों के जवाब में आईजीपी दान बहादुर कार्की ने कहा कि जांच प्रणाली को पारंपरिक से आधुनिक बनाना आवश्यक है। उन्होंने हिरासत की दयनीय स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि वेंटिलेशन हटाने और शिकायत प्रणाली को तकनीक आधारित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में कारागार व्यवस्था विभाग ने जानकारी दी कि भाद्र 23 और 24 गते के जेंजी विद्रोह के दौरान फरार हुए लगभग 14,500 कैदियों में से अभी भी लगभग 4,000 कैदी फरार हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल ने कहा है कि निर्माण क्षेत्र में देखी जा रही समस्याओं को हल करने के लिए सरकार तैयार है, इसलिए निर्माण व्यवसायियों को निश्चिंत होकर काम करना चाहिए। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत पूर्वाधार विकास समिति द्वारा आज सिंह दरबार में आयोजित मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण पर पड़े प्रभावों पर चर्चा के दौरान मंत्री लमसाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की कीमतों का समायोजन कानून और नियमों के अनुसार किया जाएगा और सरकार निर्माण व्यवसायियों की समस्याओं को समझती है। मंत्री लमसाल ने निर्माण व्यवसायियों से काम में देरी न करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि खरीद समझौते के मानकों के अनुसार कार्य समय पर पूरा किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि संचार माध्यमों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि जैसे सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, वैसे ही मीडिया को भी स्वयं जवाबदेह होना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल नेपाल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न निकायों के पुनर्गठन के लिए विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। बैठक में मंत्री तिमिल सिन्हा ने यह भी जानकारी दी कि नेपाल अपने स्वयं के सैटेलाइट उपग्रह के लिए भी प्रयास कर रहा है। सरकार ने बकर ईद उल अजहा के अवसर पर जेठ 14 गते सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए मुस्लिम आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि विक्रम संवत 2083 साल जेठ 14 गते यानी गुरुवार को बकर ईद का पर्व पड़ता है, इसलिए उस दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि 2082 फागुन 18 गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र के अनुसार बकर ईद के दिन सार्वजनिक छुट्टी देने की व्यवस्था है। मोहतरी की मनरा सिसवा नगरपालिका वार्ड नंबर 7 सरपल्लो में दो सगी बहनों सहित 3 बालिकाओं की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई है। मृतकों में स्थानीय वीरेंद्र भंडारी की 13 वर्षीय बेटी स्नेहा भंडारी, 6 वर्षीय शिवानी भंडारी और वहीं के रहने वाले अजीज नताफ की बेटी अफसाना खातून शामिल हैं। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार सरपल्लो स्थित मुनीलाल माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 6 में पढ़ने वाले स्नेहा और अफसाना अंकुशी और जंघा नदी के संगम स्थल पर नहाने गई थी। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल और नेपाल यात्रा पर आई ब्रिटेन की मंत्री सीमा मल्होत्रा के बीच बैठक हुई है। सिंह दरबार स्थित शिक्षा मंत्रालय में हुई इस बैठक में नेपाल और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने और शिक्षा और खेलकूद क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग विस्तार करने पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार समानता और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखने वाली ब्रिटिश मंत्री मल्होत्रा 3 दिवसीय दौरे पर आज सुबह नेपाल पहुंची हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए चल रहे साझेदारी कार्यक्रमों और भविष्य में संभावित सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही नेपाल सरकार द्वारा 7 प्रदेशों में शुरू करने की योजना वाले ऑटिज्म स्कूल की अवधारणा और उसके क्रियान्वयन पर भी महत्वपूर्ण परामर्श हुआ। सरकार ने संगीत रॉयल्टी, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा से जुड़े विवाद, शिकायतों और प्रणालीगत समस्याओं के अध्ययन के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के ध्यानाकर्षण के बाद लक्ष्मण बिडारी शेष की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति गठन की है। मंत्रालय स्तरीय निर्णय के अनुसार ये समिति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पोडल के सचिवालय के अनुसार गठित की गई है। समिति में सूचना तथा संचार मंत्रालय के अंतर्गत सूचना तथा प्रसारण विभाग के प्रमुख, नेपाल कॉपीराइट रजिस्ट्रार कार्यालय की रजिस्ट्रार सविता कार्की और संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत पुरातत्व तथा संपदा शाखा की प्रमुख सुभद्रा भट्टराय सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति की सदस्य सचिव के रूप में संस्कृति शाखा की उप सचिव निर्मला न्योपाने को नियुक्त किया गया है। मंत्रालय ने समिति को गठन की तारीख से 10 दिनों के भीतर आवश्यक सिफारिशों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्यादेश दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के समझौते तक पहुंचने की संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के समझौते तक पहुंचने की केवल 50-50 संभावना है। उन्होंने तेहरान से आग्रह किया कि वो मध्य पूर्व युद्ध के कमजोर युद्ध विराम के दौरान बातचीत को बार बार रोकने और फिर शुरू करने और इसमें अत्यधिक सौदेबाजी जैसे काम न करें। ईरानी अधिकारियों ने वर्षों में कई अवसर खो दिए हैं क्योंकि वे अपनी शक्ति का अधिक आकलन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, गरगाश ने प्राग में ग्लोबसेक फोरम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस बार ऐसा नहीं करेंगे। गरगाश ने बताया कि अमेरिकी सैन्य सुविधाओं वाले तेल समृद्ध यूएई पर 28 फरवरी से शुरू हुए 40 दिनों के युद्ध के दौरान लगभग 3,300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा द्वारा अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 हुआ पारित। रासोपा के सभापति रवि लामिछाने सहित 3 व्यक्तियों के ऊपर से संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी केस वापस लेने का कास्की जिला अदालत ने किया आदेश। मोहतरी की मनरा सिसवा नगर पालिका में 3 बच्चियों की डूबने से हुई मौत और हॉर्मुज के संबंध में अमेरिका ईरान के बीच समझौता अभी भी अनिश्चित है, यूएई का दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
2: स्टार 14-15 हेस डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

श्री राधा रानी है गोविंद राधे, सर्व शक्तियों की मूल बता दे। श्री राधा रानी है गोविंद राधे, परात पर शक्ति रूपिणी बता दे। राधा के चरणों में गोविंद राधे, बार बार कर लो प्रणाम बता दे। राधा गोविंद गीत। आदरणीय श्रोताहरू, जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज द्वारा प्रणीत अनमोल ग्रंथ राधा गोविंद गीतमा अत्यंत सरल भाषामा एवं सुंदर ढंगले शास्त्र द्वारा निरूपित विभिन्न विषयहरूको विशद वर्णन गरिएको छ। गाउन सजिलोका साथै सुन्दा पनि कर्णप्रिय लाग्ने यी ग्रन्थमा 11,111 दोहाहरू प्रकाशित रूपमा छन् भने हजारौँ यस्ता दोहाहरू अझै प्रकाशित हुने बाँकी छन्। राधा गोविन्द गीत ग्रन्थको जानकारीका साथै कार्यक्रम अध्यात्म